रिलैक्स लाई बेले बो कितनी इसी लो के मातं होने नेक इम्पोर्टांते लियु माक ला बेले तोबा फिला फाली तंबा ओहिन लोरों आनिं फ्रेशकु दादेर्नियान इहा नोविदादिस नो इहा से ग्रेडु अतु कोंता बाई तबोत्सिरा.